0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
1: के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
4: Taza kare apni yaadein Leica Gold ke saath.

0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लायका गोल्ड पर।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन का

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा से संजोग विखान, जिने लिखे ते सिर नाहे।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेख है सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Like a Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
3: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
2: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
4: Two businesses,
5: same town,
4: same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा. भक्ति ना सुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Dad.
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA. Rakhi

0: packed for the trip? Gifts? Passport?
1: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
2: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
1: Simzy?
2: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
5: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
6: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
7: भाई, निकाल माइक।
8: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर।
9: The brand new reality TV show Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
10: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है UK. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th of September एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
13: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 PM with the best tunes, mind games and a bit of Ye Ya Wo. Only Laika Gold.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
4: हेलो रे हेलो आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्डम मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति ना सुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092-4667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: September mahina ma hasano double dhamako fari aavi rahyo chhe.
6: Tame bata purush ho to lagne kuvara ho chho.
7: E tame stri amne chhe ne purusho nam khota obovano band karo.
5: Comedy king Nimesh Shah ane queen of comedy Mallika Shah laine aavi rahya chhe. Super hit Gujarati natak. Halo Patel bhai ni jaan ma. Have Risley, Potter's Bar, Ilford, South लंडन अने ल्यूटन मा टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 नाटक नु नाम याद राखजो
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.
8: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.

0: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
4: Cutthroat Ke Khiladi.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Like a Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. Meh.

0: takes those drips and drops.
1: And takes shorter showers, yeah?
0: Because when we work together, it all adds up.
1: So come on, you lot, search Let's Save Water.
2: Yeah. Like our gold. This part of the show is brought to you by Khatron Ke Khiladi on Colours TV. Khatron Ke Khiladi, every Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Khatron Ke Khiladi. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी.
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
7: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
8: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Ye hai
2: Laika Gold.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
4: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं जिंदगी भर याद रह जाती हैं और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956-278-228 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
5: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.

0: Point.
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
0: Relax, I've booked the Uber already.
1: How? My roaming isn't even working yet.
0: I switched to Simsy before we left London.
1: Simsy? Since when are you the tech expert?
0: Since I decided I want a stress-free holiday.
2: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
0: T's and C's apply. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal. Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.
3: 0730099823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Dad!
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, balle balle. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated.

0: ਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
4: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. It's summer on the Leica Radio Network.

0: और अगर आप ही ना होते ना तो ये लाइक रेडियो नेटवर्क नहीं होता. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो रेडियो स्टेशन एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस. एंड डोंट फॉरगेट आवर एइथ रेडियो स्टेशन इज बीइंग लॉन्च्ड वेरी वेरी सून. इट्स लाइक अ रेडियो गजल एंड आई कांट वेट टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. टॉकिंग ऑफ व्हिच बाय द वे,
1: फील गुड हिट्स इन द सन with Like a Gold.
0: I wanted to share something with you, which is really weird, right? 18, 19-

0: now. Apta Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
2: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: क्या लगा आपको मैं नहीं आया हूँ? आ भी गया हूँ और वेदर बता भी रहा हूँ भाई। आज के मौसम के विषय में देर इसलिए लगा रहा हूँ कि कुछ नया तो है नहीं, अभी तक तो वैसा ही चल रहा है जैसा पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन कल से चेंजेस होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और न सिर्फ बारिश बल्कि ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है भाई। इंतज़ार है उस वेदर का और इस वेदर को जल्दी से जल्दी हम बाय बाय कहना चाहते हैं। तो आज लंदन व आसपास के एरियाज में मौसम वैसा ही, मैक्सिमम टेम्परेचर कुछ कम हुआ, 26 डिग्री मैक्सिमम, हल्की हवाएं भी चलेंगी और भाई कुछ छुटपुट बादल भी नजर आएंगे।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: गुड मॉर्निंग। एक और नए सप्ताह की शुरुआत मनोरंजन के साथ। सोमवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 17 तारीख हो गई साहब। देखिए ना वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। ये वक्त नहीं गुजर रहा है, हम गुजर रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है। खैर साहब निराशा की बातें नहीं, आशा की ओर लौट आइएगा। माय नेम इज रवि शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू काजल, शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और भाई अब कहूंगा आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ बहनों भाइयों। और कहता हूँ कि तुमको मेरे दिल ने पुकारा है नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: तुमको मेरे दिल ने पुकारा है नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। भैया मेरी आवाज नहीं, मेरे प्यार की आवाज है। दिलदार की आवाज है। दिल के साज के तार की आवाज है। मेरे प्यार की आवाज सुनते ही चले आना, जुड़ जाना लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड से।

0: बैक टू बैक संगीत में दो गीत वही हमने आपके सामने परोसे और मुझे यकीन है कि बड़े चाव से आपने सुने। भाई पहला गीत था फिल्म राजमहल से मेरे प्यार की आवाज पे चली आना, एंड सिंगर्स वर रफी साहब और लता जी। इस जोड़ी ने ऐसे ऐसे भाई हिट और सुपर हिट और मेगा हिट गीत संगीत प्रेमियों के लिए छोड़े हैं कि हम भाई जिंदगी भर जो है उनका लुत्फ उठाते रहेंगे। दूसरा गीत जो अभी आप सुन रहे थे, ये पगला है समझाने से समझे ना, बिल्कुल मैंने प्यार किया, अपने दौर की ये भी सुपरहिट फिल्म थी 1989 की। और साहब लता जी की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। हम इस गीत को गा करके ना गुनगुना करके उन दिनों ये दौर था वो प्रेम प्रसंग जो है बड़ा प्रसिद्ध हुआ था बिल क्लिंटन का और वो क्या थी उनकी प्रेयसी जो मतलब उसको लेकर के समथिंग समथिंग मोनिका थी डीएनसी समथिंग समथिंग नाम था उसका। तो भाई उसको लेकर के कहते कि कुछ पंजाबणे इकट्ठी होकर के और बिल क्लिंटन के घर गई और कह दिए क्यों बीबी अपने बंदे नु सामगे नहीं रख सकती कितने अख में टका करदा फिरदा एक तरह बता प्रेजिडेंट बनया फिरदा ना बिल क्लिंटन बारे शिकायत लेके आई हैं। भाई वो बहुत सारी पंजाबड़ों ने जाके जब बार बार शिकायत की तो हिलेरी क्लिंटन ने पता क्या कहा,
1: बिल तो पागल है, बिल दीवाना है।
0: और पागल है दीवाना ते बीबी उन्हें समझा तो फिर क्या कहती हिलेरी क्लिंटन,
1: ये पगला है समझाने से
0: आप भी इतना समझ लीजिए ये समझाने के बाद कि आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। ये सब सिलसिला शुरू हो चुका है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको पाउंड का रेट बताते हैं। एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में कितने रुपए मिल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले बताएंगे।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK yani State Bank of India UK giving it today 129.3 Indian rupees for one pound. एक पाउंड के बदले 129.30 रुपए का रेट चल रहा है और भाई भाइयों you can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Leica Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at Quality Food Branches.
2: Deirdre, look, it's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
3: Leave them be, Philip. They just claim confident.
2: Claim confident?
3: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
2: Deirdre? Deirdre? Come back here.
4: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
5: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Hosh walon ko khabar kya, bekhudi kya cheez hai.
7: Aapka naya station, Leica Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
8: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
10: और लीजिए सब डेयरी वैली वालों का ये तोहफा. दरअसल बात यह कि इस गीत को सुनवाने से पहले मैं सीधे गीत भी लगा सकता था, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो गीत आ रहा है ना, ये किसी क्या वो होते हैं, भिखारी होते हैं, उन पर पिक्चराइज हुआ है. और भिखारियों पर इतने गीत बने हैं, एक पूरी जो है ना श्रृंखला उनकी तैयार हो सकती है. रफ़ी साहब ने कुछ गीत बहुत दर्द भरे स्वर में गाए हैं, याचिका वाले, एक याचक वाले स्वर में. और भाई रवि साहब जो धुन बनाते हैं किसी मांगने वाले के ऊपर जो गीत पिक्चराइज हुआ हो, उसकी क्या बात कहें. सुनिए ज़रा, और ऐसा जी चाहता है कि कुछ ना कुछ दे डालें भाई इसको.

0: दुआ भाई, गीत में दुआएं हैं, गीत में याचना है, औलाद वालों फूलो फलो। रफी साहब और आशा जी की आवाजें और महान संगीतकार रवि की बनाई धुन। और भाना भाई, मुझे लगता है कि रवि साहब ने तो खुद कहा था कि मैं तो गली में एक भिखारी का गीत सुनकर के मेरे दिमाग में एक धुन बैठ गई, मैंने वो गीत रच दिया, बड़ा बेदर्द जहां है। कहते वो गुनगुनाते हुए पहली लाइन को पीछे ऐसे छोड़ता था जैसे ड्रॉप कर रहा हो, बड़ा बेदर्द जहां है, नीचे ले आता था आवाज़ को। कहते मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया इस गीत में, वो जो गा रहा था वो कुछ और था, लेकिन उसका जो गाने का स्टाइल था वो मैंने अपने गीत में इस्तेमाल किया। और भाई ये भिखारियों वाले कई गीत, कहते हैं मैंने भिखारियों को सुन करके मेरे को ये प्रेरणा मिली। रफ़ी साहब भी कहते हैं कि एक भिखारी को गली में गाते हुए सुनकर ही उसे वो गुनगुनाने लगे और उन्हें गायन की प्रेरणा उनसे भी मिली थी। तो भाई ऐसा सुनने में आता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मांगने वाले या कुछ बेचने वाले या कुछ इस तरह का काम करने वाले भाई जो गीत गाते हुए अपना कारोबार चलाते हैं, बड़े सुरीले हो जाते हैं और बहुत सुरीला गुनगुनाते हैं। साहब खबरों का समय हुआ जाता है, पहले तो बताते कि गीत आप तक कौन पहुंचा रहे थे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: यूरोपियन एथलीट्स की चैंपियनशिप्स के जो मेडल देने की सेरेमनी थी, कहते वो डिले कर दी गई है क्योंकि चैंपियनशिप्स के बारे में कहते पुलिस ने कुछ फ्रॉड अरेस्ट किए हैं। और इसके अलावा भाई मौसम को लेकर के भी खबरें गर्म हैं, कहती हैं आने वाले दिनों में बिल्कुल अपोजिट जो है न सिर्फ बारिश की संभावनाएँ जताई जा रही हैं पर ओले पड़ने की आशंका भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक यूँ समझिएगा कि चुनौती होगी यहाँ ब्रिटेन वासियों के लिए कि उन्हें इस मौसम से निपटना है क्योंकि हवाओं का रुख भी बदलेगा। तो आने वाले समय में भाई देखते हैं क्या कुछ बदलने वाला है। इसके अलावा आज के समाचारों में और क्या क्या है देखते हैं।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का सांझे रक्षा डिफेंस समझौते पर रिएक्ट किया है। उन्होंने तीनों मुल्कों के नेताओं को बधाई देते हुए इसे एक बोल्ड स्टेप बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर यानी मक्का ज्वाइंट डिफेंस समझौते पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। ये दिखाता है कि मिडल ईस्ट एक साथ आ रहा है और देश आखिरकार अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से कदम उठा सकेंगे। और भाई इसके रिस्पांस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद भी किया है, शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मक्का समझौते पर दस्तखत किए जाने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए समर्थन के लिए, दी गई हिमायत के लिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत से आने वाली खबरों में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी के मामले में एक डायरेक्शन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट में चल रही कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित करने का, पोस्टपोन करने का निर्देश दिया है। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए इल्जामों की पुष्टि करने के टाइप करने के निर्देश दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने चिदंबरम की दिमागी नक्सली वाली टिप्पणी पर एक बयान दिया है। चिदंबरम ने कहा था कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। मेंटली नक्सली होने पर भैया दिमाग के तौर पर इस पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम लोग हैरान हैं कि मात्र 24 घंटे के भीतर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद निकल कर सामने आ गया। फॉर्मर होम मिनिस्टर और वित्त मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पर फक्र है, कितनी हैरानी की बात है। एक खबर और चर्चा में, एक गाड़ी भाई फरारी बहुत चर्चित है क्योंकि ये पहली फुल इलेक्ट्रिक कार है और एक नीलामी में $4 करोड़ यानी करीब 382 करोड़ रुपए में बिकी है। ये नीलामी एक चैरिटी के लिए हुई थी और भाई ऐसे काम के लिए लोग और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई इस नीलामी में फेरारी लूचे नाम की यह कार सामान्य कीमत से, आम प्राइस से 35 गुना से भी ज़्यादा बोली में बिकी और नीलामी घर ने बताया कि यह कार पहली प्रोडक्शन चेसिस है, इसमें खास फिनिश के साथ कई कस्टम पार्ट्स लगाए गए हैं। किम जोंग के साथ अच्छे रिश्तों के कारण ट्रंप ने साउथ कोरिया को लेकर एक कदम उठाया। अच्छे रिश्ते दोनों के बीच, वेल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका साउथ कोरिया के साथ होने वाले साझे फौजी अभ्यासों में काफ़ी कमी करेगा। उन्होंने इसकी वजह उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने बहुत अच्छे रिश्तों को बताया। यानी साउथ कोरिया के साथ तो अमेरिकी रिश्ते हैं, वो फौजी अभ्यास करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने के कारण अब हम साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कम करेंगे, उनमें कमी करेंगे। योग गुरु रामदेव ने कहा, बच्चे अगर आंदोलन करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब। योग गुरु रामदेव ने कहा कि आंदोलन में बच्चों को नहीं धकेलना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे कब अगर वो आंदोलन में व्यस्त रहेंगे तो। उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन का हालांकि समर्थन करते हैं, हिमायत करते हैं, लेकिन अराजक आंदोलन का बिल्कुल नहीं। रामदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के बचपन खतरे में है, इसलिए इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कुछ लोग बचपन का इस्तेमाल आंदोलन में कर रहे हैं। बंगाल से खबर आई है, वेस्ट बंगाल से। वीरभूम जिले के तारापीठ में आज तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कम से कम 12 लोगों को रामपुर हॉट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और भाई प्रशांत किशोर का एक बयान चर्चा में बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान का इल्जाम लगाया। यह विवाद 15 अगस्त 2026 को, मतलब इसी इंडिपेंडेंस डे पर, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में झंडा लहराने के कार्यक्रम के दौरान सामने आए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ है। इस मामले में जन स्वराज पार्टी के फाउंडर और विधायक प्रशांत किशोर की टिप्पणी भी आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बयानबाजी करने की बजाय सोनिया गांधी पर केस कर देना चाहिए। इल्जाम यह कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया। और साहब, रूस का दावा है, रूसी अधिकारियों ने ये क्लेम किया है कि यूक्रेन ने रूस पर इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान करीब 822 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से 600 ड्रोन्स ने राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और अब लौट आइए संगीत की ओर। मोहम्मद रफी साहब की आवाज एक बार फिर आपके कानों में रस घोलने आ रही है।
3: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
2: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
1: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति ना सुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Have you noticed the way fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: Dad!
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan. Shravan ke pavitra mahine mein kare भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
10: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
11: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
12: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
11: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
14: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

थॉट फॉर द डे, आज का विचार। लाइका रेडियो नेटवर्क वर्क पर लाइका गोल्ड के कार्यक्रमों में भाई ये मनोरंजन है और मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं दोपहर बाद 1 बजे तक ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ, लेकिन इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, मैं पेश करता हूँ आज का विचार जिसे हम कहते हैं चिंतन।

आज के चिंतन में शामिल करने के लिए आलेख हमें गगन अरोड़ा ने भिजवाया है। गगन कहती हैं कि उनकी बेटी की शादी के अवसर पर एक गीत भी प्रोग्राम में शामिल कर दीजिएगा, वही कर लेंगे आगे चल करके। फिलहाल आपका चिंतन बहुत अच्छा लगा और आज की भाई इसमें हम क्रम में शामिल कर रहे हैं। तो सुनिए बहनों भाइयों, सम्राट कौन है, सेठ कौन है, धनवान कौन है? चाइना की ये बात है। कन्फ्यूशियस बहुत बड़े विचारक हुए हैं। कन्फ्यूशियस एक जगह बैठे थे तो सम्राट चाउथिन, चीन के सम्राट उधर से गुजरे। चाउथिन ने कन्फ्यूशियस से पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं। सम्राट हैरान था, बोले तुम राजा हो? राजा तो मैं हूं। सम्राट मैं हूं, इस देश का शासक मैं हूं। तुम कैसे कहते अपने आप को सम्राट? मेरे पास फौज है, मेरे पास महल है, मेरे पास सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, मंत्री हैं। तुम यहां अकेले जंगल में बैठे हो, फिर सम्राट कैसे हुए? तो कन्फ्यूशियस जोर से हंसे, जैसा कि भाई वो अक्सर हंसते थे, मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे। राजा ने फिर पूछा, बताओ तुम्हें सम्राट किस कारण से माने? तो कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, तुम राजा इसलिए हो कि तुम्हारे पास नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, पर सेवक तो उसको चाहिए जो आलसी होता है, जो लेजी होता है, हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करने लगता है। इसलिए मेरे साम्राज्य में सेवक की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह तुम्हारे पास सेना है, तुम अपने आप को इसलिए राजा कहते हो। तो सुनो, सेना की, फौज की जरूरत उसको होती है जिसके दुश्मन हो। मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। ठाट बाट, धन वैभव भी उसे चाहिए, धन दौलत उसको चाहिए जो दरिद्र हो, गरीब हो बहुत, और असंतोषी हो, जिसके पास सेटिस्फैक्शन की कमी, जो लालची हो, और मांगता है, और चाहता है, उसको धन दौलत चाहिए। मैं तो संतुष्ट हूं, मैं हर तरह से तुमसे ज्यादा सुखी हूं। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, नौकर चाकर नहीं चाहिए, फौज नहीं चाहिए, राजमहल नहीं चाहिए, मैं यहां संतुष्ट हूं, खुश हूं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए मैं खुद को सम्राट मानता हूं। सम्राट चाउथिन कन्फ्यूशियस के तर्कों का उत्तर नहीं दे सका और उसके सामने श्रद्धा से झुक गया। सचमुच राजा तो वही है जिसे कोई लालच नहीं है, जिसे अच्छी नींद आती है, समय पर भूख लगती है। राजा तो वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसे फौज नहीं चाहिए, और वो लेजी नहीं है इसलिए उसे नौकर चाकर भी नहीं चाहिए। राज है ना पाठ है, फिर भी जो है राजा साहब, सचमुच वही है राजा साहब। आप भी अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप संतुष्ट हैं? अगर हैं तो आप भी हैं राजा साहब।

0: धन वैभव राजपाट सुख दुख ये तो मन की अनुभूतियां हैं, एहसास हैं। मन से आप राजा हैं तो आप राजा हैं, और मन से जो दरिद्र होता है वो राजा होकर भी वो लालची रहता है और धन पाने की इच्छा रखता है और राज्य हथियाने की इच्छा रखता है। आज का चिंतन, आज का विचार हमें भाई गगन अरोड़ा ने भिजवाया। गगन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चिंतन के साथ जो गीत हमने शामिल किया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म राजा साहब, जैसा कि टाइटल से ही पता चला। और बहनों भाइयों, हमें एक डेडिकेशन भेजी है गगन अरोड़ा ने। कहते हैं कि मेरी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ है, तो उनके लिए गीत लगा दीजिएगा। तो ज़रूर मैं ब्रेक के बाद जो गीत लगाऊंगा वो आपकी बेटी शिवानी के लिए होगा, शिवानी और उसके वंडरफुल हस्बैंड ऐना के लिए। ऐना और शिवानी विवाह के बंधन में बंधे हैं। 15 अगस्त को कहते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ऐना गुलाम हो गए, बंधन में बंध गए। वल बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं शिवानी और ऐना को, और भाई ये गगन की ओर से, उनके परिवार की ओर से, और बर्क परिवार जिसमें बेटी गई है डेविड और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गीत का इंतजार कीजिए, पहले हम चिंतन को समेट लें। याद दिला दूं बहन भाइयों, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, yani State Bank of India UK, today giving 129.3 रुपीज, इंडियन रुपीज मैक्सिमम फॉर वन पाउंड। तो भाई अगर आप लोगों को पैसे भिजवाना चाहते हैं, खासकर राखी के अवसर पर बहनों को भिजवाना चाहते हैं या दोस्तों रिश्तेदारों को, इस समय भारत में पैसे भेजने का सही समय है, क्योंकि SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK कहते हैं रेट अच्छा चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर बाय ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। TNDC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Like a Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: बैक टू बैक संगीत हमने आपको सुनवाया, और अब भाई एक प्रायोजित गीत सुनवाएं, और उसके बाद क्या कुछ ढूंढ कर लाएं, क्योंकि आज एक त्यौहार भी है। दरअसल क्या हुआ कि मैंने सुबह सुबह अपनी पत्नी को चाय या कॉफ़ी बना के देने की बजाय आज एक कप दूध उनको बना के दिया ना, गर्म करके, तो कहने लगी क्या बात है आज दूध क्यों। हमने कहा कि आज दूध पिलाने से पुण्य लगता है। क्या त्यौहार है आज? मैंने कहा नाग पंचमी। तब से भैया झगड़ा चल रहा है, नाग पंचमी है आज। मैंने भाई हो अपनी पत्नी को दूध मत पिलाना, नहीं तो वो समझ जाएगी कि क्यों पिला रहे हो। वैसे पर्व है भाई ये, तो आपको हंसाने के लिए बातें बनानी पड़ती है, वरना इस पर्व का भी एक अपना महत्व है। और लीजिए सुनिए गीत, प्रायोजित गीत जो है वो नाग पंचमी के अवसर पर, मुझे लगता है कि ये गीत अच्छा लगेगा।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: पिछले हफ्ते भी शायद हमने भी बताया था बहनों भाइयों के नाग के या सांप के या नागिन के कान नहीं होते, फिर वो बीन की ये धुन सुनकर के झूमते कैसे हैं? क्योंकि वो तरंगों को पढ़ते हैं आंखों से, इसलिए उन्हें चक्षुश्रुवा कहा जाता है, आंखों से सुनने वाले। उनके पीछे से भी कोई व्यक्ति गुजरेगा तो उनको पता लग जाएगा, हवा की लहरों को पढ़ते हैं वो, बीन की लहर को इस तरह से आंखों के माध्यम से एंजॉय करते हैं सांप लोग। बहुत सारे फिल्मी गीतों में भाई बीन का उपयोग किया गया है, और सबसे बढ़िया तो लता जी की आवाज़ में जो गीत है ना, तन डोले मेरा मन डोले, संगीतकार रवि और संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह, इन दोनों ने जो लहरा उठाया भाई बजाया, दुनिया भर में छा गया।

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
5: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
4: Conditions apply. See online for details.
6: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।
1: अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम

0: कमाल हो गया भाई, बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आकर के चिपक गए हैं हमारे स्क्रीन पर। हेलो कहना चाहते हैं विजय को सटन में, थैंक यू वेरी मच। और नीलम बख्श, नीलम जी मुन्ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रिसीव्ड योर मैसेज, थैंक यू वेरी मच। और आप हैं, हेलो शर्मा जी नमस्ते फ्रॉम सुकुबाई, केम छो तमे सारू, प्रकाश नॉर्थ होल्ट में, जगदीश बुशी में, भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर भाई आपका भी शुक्रिया, हेलो हरियाणवी वाली ले लो हेलो सीजर फर्नांडिस साहब, अर्जुन जी, रागिनी, अनिल सोनी वियाना में, और महेंद्र पटेल क्रोइडन में हमें सुन रहे हैं, थैंक यू भाई। आपको याद होगा कि कल 16 तारीख को ठीक है, वो काजल ने भी बताया था कि नुसरत फतेह अली खान साहब की पुण्यतिथि थी, यानी बरसी थी, लेकिन बरसी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वो प्रधानमंत्री जो सीमा के दोनों तरफ बड़े लोकप्रिय थे और भाई बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ, उनकी कई बातें हमारे चिंतन का विषय बन सकती हैं, लेकिन भाई आज श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। पर ज़रा सोचिए, 15 अगस्त को अगर वाजपेयी जी की डेथ होती तो पूरा भारतीय स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन प्रभावित होता, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को भाई रोक के रखा कि मैं जाऊंगा दुनिया से तो उस दिन नहीं जाऊंगा जिस दिन पूरे हिंदुस्तान को शोक मनाना पड़े सेलिब्रेशन की जगह। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाए, इसलिए अटल जी ने 16 अगस्त को आखिरी सांस ली। भाई हम श्रद्धा से नमन करते हैं उस महान राजनीतिज्ञ को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: मंजूर नहीं था उनको कि भाई झंडा झुके, 15 अगस्त को झंडा लहराता रहे तिरंगा। अब भाई रेट्स बता दूं आपको LemFi की, अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो दे आर गिविंग For £1, they are giving 129.65 Indian rupees, 375.86 Pakistani rupee. Sri Lankan rupee 1 pound ke badle de rahe hain 450.13, Bangladeshi take 166.16 and Afghani 88.78.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold mehenga ho gaya bhai, lekin Leica Gold to amulya hai, jiska koi mulya nahi ho sakta. Well, real gold jo hai, it is sold in the market at the rate of 104.34 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से स्टार्ट अप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा, भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: One performer.
6: Countless personalities.
5: A whole universe of entertainment.
6: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
5: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
6: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
5: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 आवर लाइन 0730099823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉड

0: That's SIMZY.com. T's and C's apply.
1: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
4: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
9: Manoranjan with Ravi Sharma.
10: और भाई आज 17 अगस्त को नाग पंचमी के त्यौहार के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल त्यौहार परिवारों में मनाए जा रहे हैं, अपने पर्सनल त्यौहार जैसे कि जन्मदिन. और भाई आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द नेम. आज जन्मदिन है सचिन पिलगांवकर का. एक्टर सचिन को तो जानते हैं, भूले नहीं होंगे. भाई मज़े की बात यह है कि सचिन 17 अगस्त 1957 में जन्मे और उनकी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर वो भी आज ही के दिन अपना जन्मदिन मना रही हैं. और भाई इनका परिचय तो बचपन से ही फिल्मों में काम करने लगे थे सचिन बाल कलाकार के रूप में. लेकिन पहले इनका सरनेम होता था राजाध्यक्ष, बाद में ये पिलगांवकर कैसे हो गए लंबी कहानी साहब. मुंबई में आके फिल्मों में कामयाब हुए तो सचिन पिलगांवकर से परिचय पूछो तो कुछ यूं कहेंगे.

गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से। वैसे भाई गुजराती और मराठी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, एक हरियाणी फिल्म में भी ये काम कर चुके हैं, हमारे शहर में शूटिंग की थी।

0: लता जी की आवाज। अलीबाबा और 40 चोर फिल्म का गीत आपने सुना, और इससे पहले जो गीत हमने सुनाया दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म त्रिशूल, 1978 की फिल्म। और भाइयों ये कार्यक्रम शुद्ध 2026 का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मनोरंजन विद रवि शर्मा, एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। लेट्स फाइंड आउट द पाउंड रेट अगेन फ्रॉम SBI UK
1: मनी टॉक। सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो SBI UK ऑनलाइन एंड वाया द SBI UK ब्रांच,
0: एंड दैट कॉम्पिटिटिव रेट इज 129.3 इंडियन रुपीज फॉर 1 pound। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय using the YONO SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai like a gold.
3: Like a gold.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: किसी की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
2: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
2: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 पाउंड्स।
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757। Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
5: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
6: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो।
7: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगवानू बंद करो।
5: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटनमा। टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजूने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
8: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.

0: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
3: आर्टिस्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह हैं भाई मशहूर गीतकार, शायर, लेखक साहिर लुधियानवी। भाई साहिर साहब के बहुत सारे गीत जो हैं अवार्डेड हैं। साहिर साहब के बहुत सारे गीत इतने प्रसिद्ध हैं कि वो लोगों की जुबान पर हैं। पर साहिर साहब को जब हम याद करते हैं तो अक्सर संगीतकार रोशन, संगीतकार रवि और लेखिका अमृता प्रीतम भी याद

0: साहिर साहब के गीत गूंजेंगे भाई, नगमे उनके जो है छाए रहेंगे इस सप्ताह, क्योंकि ही इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। देखिए साहिर लुधियानवी साहब के साथ भाई कई नाम जुड़े, और लेखिका अमृता प्रीतम उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थीं, और भाई उनके नाम चर्चा मैंने, सुधा मल्होत्रा के साथ भी उनका नाम जुड़ा, और साहिर साहब जो है यूँ कहिए कि उर्दू शायरी के ऐसे शायर थे जो सीमा के दोनों तरफ जो है बड़े मशहूर, और भाई कॉलेजेस में पढ़ाए भी जाते हैं, उनके गीत गुनगुनाए भी जाते हैं। लिटरेरी ही वॉज़ अ प्रोफेसिव पर्सनैलिटी, और आपको बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी उन्हें मिला, और ये 1973 में मिला था, और बहुत सारे उनके गीत जो हैं वो भी नॉमिनेट हुए और सम्मानित भी हुए। तो भाई इस सप्ताह तैयार रहिएगा, आर्टिस्ट ऑफ द वीक टाइटल के तहत आप सुनेंगे साहिर लुधियानवी की रचना।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Geet to sunwaya nahi aapne, thanks kar diya. Zara phir se shuru ho jaiye.

नजरों में प्यार, लब पे मोहब्बत की बात है। ऐ जाने वो हवा, ऐ जाने ऐ जाने वफा, तेरी इजाजत की बात है। उकसा रहा है कुछ तो ये मौसम खताओं पर, कुछ मेरी बेईमान सी नियत की बात है।

0: छुप चोरी चोरी लुक छुप आ दो बता कर ले।
1: दो बातें क्यों भाई, दो चार बातें, 10-20 बातें। और तुम नहीं करोगे, लुक छुप के बातें करोगे तो फिर लोग बातें करेंगे। मुझको मिली है इश्क की तौफीक खुदा से, तुझको मिला है हुस्न ये किस्मत की बात है। बहकी हुई निगाह पे गुस्सा न कर सनम, मुझको तेरी कसम ये शरारत की बात है। नजरों में प्यार, लब पे मोहब्बत की बात है, ऐ जाने वफा तेरी इजाजत की बात है।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ye hai Laika Gold.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
1: एक बार फिर गूंजती हुई रफी साहब की आवाज, इसमें और ज्यादा शरारत है। हंसा बोरा सुन रही है हमें अहीर गनोआ साहब, यादव जी थैंक यू वेरी मच, विजय शेखर सब भाई साथ जुड़े हुए हमारे, थैंक यू आप सब के लिए ये गाना। समझ गए होंगे कौन सा गाना है ये। ये शरारत की बात है। तो मैं सीधा बोला जट यमला पगला, मैं क्या जानू शरारत। रफी साहब धर्मेंद्र के लिए।

0: are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रैवल याद दिला रहे हैं आपको भाई कि साउथहॉल ट्रैवल जो है दुबई के लिए बहुत बढ़िया डील्स दे रहे हैं। दरअसल FCDO ने जो सूचना दी थी पहले यात्रा के बारे में वहाँ कि दैट वाज अगेंस्ट बट ऑल एसेंशियल ट्रैवल टू दुबई, लेकिन अब जो है खुला है भाई, वहाँ पर सबको निमंत्रण है। कॉल साउथहॉल ट्रैवल फॉर द मोस्ट कम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com। वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 0192-322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
6: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
6: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
7: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: हौसलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
11: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
12: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हौसलो, TW3 1QT। कॉल करे 0748768788585।

सलमा आपके नाम ये गीत, आपके लिए ये गीत भाई इबादत का गीत है। और फरीदा गुलाम अली जी आज ये सुनकर संतुष्ट हो जाइए, आपकी पसंद का वो गीत भी बुधवार को प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

आप यकीन करेंगे भाई, एक वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी और नुसरत फतेह अली खान साहब, प्रेम चोपड़ा जी, वही कई लोगों ने हमने मिलकर के एक फिल्म देखी साथ साथ, और वो साथ 3 घंटे बिताने का अनुभव, और फिर एक बार खान साहब को सोने का मुकुट पहना करके यहाँ जो सम्मानित किया गया लंदन में, खुदा का करम था उन पर, खास कृपा थी उन पर, रहमत थी उन पर।

0: माइकल जैक्सन की आवाज की झलक मिलती है इनकी आवाज में कभी कभी। हम तो कहते हैं भाई माइकल जैक्सन जो है वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लेट मी टेल यू द रेट्स, इनके रेट्स हैं भाई एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी 129.6 रुपीस, पाकिस्तानी 376.27, श्रीलंकन रुपए 449.95, बांग्लादेशी टका 166.41, अफगानी 88.72 एंड केनियन शिलिंग्स 175.39।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The LIKA Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold, well, the gold is sold at the rate of 104.34 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation.
2: In Dubai.
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271 934।

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: श्रावण मास का सोमवार है भाई, हमारी वत्सला जी याद दिला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको शुभकामनाएं श्रावण की और सोमवार की। और बहनों भाइयों, कार्यक्रम में अब आपसे अनुमति लेने का समय आ रहा है। हमारी शशिकला तालम सुन रही हैं। शशिकला लिखते हो, शशि नहीं, शशिकला तालम। और शशि जी, ये गीत आपके नाम करते हैं, पंख होते तो उड़ाती रे। आप ऐसे ऐसे गीतों की प्रशंसिका हैं, अपने नाम कर लीजिए। और बहन भाइयों, अब याद दिला दूं आपको कि हमारी आपकी अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद। बाली भाई इज ऑन इज वे, ही विल बी विद यू आफ्टर 1 o'clock न्यूज।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
0: हैव अ सुपर्ब डे, इजाजत दीजिए, बाय बाय। घड़ी रोके नहीं रुकती है समय रोके नहीं रुकता है, रवि शर्मा भी अब चलता है, बाय बाय।

0: मास्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
3: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
4: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
5: रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ती का सामा हो गए.
6: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
7: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen gaano ki yaadon mein ek khoobsurat musical sham. Pankaj Sodha presents Hum to Tere Aashiq.
6: Hum to Tere Aashiq hain sadiyon pura.
5: Sweet memories of Mukesh and Lata with Sangeeta Melekar aur Mukhtar Shah live band ke saath. 29th August Hedge and High School Harrow. 30th August Woodmanstone School South London. Dinner from 5 PM. Show starts at 7 PM. For tickets and more information, call Deepa on 07947561947.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: डैड,
9: व्हाट्स रॉन्ग बेटा?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by FCA and PRA.
10: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
11: Bikaner wala परंपरा भी
12: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 07795181001.
13: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड गेट अप टू 400 ऑफ. कॉल सोनाटूर्स नाउ ऑन 0208951011.
2: अक्रॉस लंदन, दिस इज Bally Brambat on Like a Gold.

0: वाह, अभी दो गाने मैंने सुने तो मैं साथ में गाने लगा और इतना दिल खुश हो गया मेरा। फ्रॉग इन द थ्रोट, आई एम सॉरी। मैंने टाइप किया मेरे ख्वाबों में तो दोनों गाने निकल आए। मैंने सुना, मैंने सोचा कि दोनों गाने मैं क्यों ना सुना दूं आपको। आई एम सो सॉरी, आई हैड अ फ्रॉग इन माय थ्रोट एंड आई हैड टू क्लियर इट आउट व्हाइल टॉकिंग। तो हनीमून फिल्म 1960, उसमें मुकेश जी ने क्या गाया लता जी के साथ, सलील चौधरी की ट्यून मेरे ख्वाबों में, एंड शैलेंद्र जी ने वो गाना लिखा इतनी खूबसूरती से। एंड दूसरा तो जतिन ललित का संगीत था और आनंद बख्शी जी ने लिखा था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन बॉलीवुड। सो दोनों गाने हिट रहे ना, आगे भी हिट ही होंगे, डोंट वरी। एक जस्ट अ विस्पर तलत महमूद जी का गाना है ख्वाब पे, वो मैं आपको सुनाऊंगा जरा, यू नो। उसके बाद हेमंत दा, हेमंत कुमार जी का गाना ए सावर, तो आपने मज़ा करना है और मैं भी मज़ा ले रहा हूँ वैसे तो। मैं हूँ बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड likeagold.com, ऑल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप। एंड इट इज़ द 405th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स। मिडलैंड वालों नमस्कार। एंड सैंडी शाह इज गोना कम एट 4 PM एंड राज पतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 4 to 7। सो इट्स वीक नंबर 33, 229th डे ऑफ 2026, 136 डेज लेफ्ट नाउ, यस। एंड इट इज 336th डे ऑफ द 4th ईयर of Leica Gold. It used to be Dil Se and it was rebranded on 13th of September 2022 as Leica Gold. This was the brainchild of hamare CEO Raj Patan, and today it's 336th day of the 4th year of Leica Gold, sailing high in the sky. I would say sailing, yes, flying and sailing, yes, it is one of the top radio stations in the country. And aage jaate hue itne sare messages aap logo ke aage, and we got Seher ji and Prakash Somaiya who've joined the party now, and Hannah and Bharti and Mitul and who else is there. Bali Bhai, I'm enjoying your show. It's Suman Regmi, lovely name though, Suman Regmi from Watford. Yes, welcome to Gold Afternoons, such a lovely message there. And Rama Patel all the way from India and from Ahmedabad, thank you very much for your wonderful messages as they are trickling in. There are many silent listeners. I would love to hear from you because pata chale ki aapki choices kya hai, to main waise gaane aapko sunata rahu, lekin abhi to choice ekdam tight hai and house full hai, maza aane wala hai. Abhi romantic gaane bhi sunayenge, chatpate gaane bhi sunayenge, alag alag singeron ke gaane sunayenge. Because this is Leica Gold, aur main hoon Bali Brahmbhatt aapki khidmat mein.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 129.3. 129.3 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najik na Asian shops ma.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation,
5: in Dubai.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
6: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
9: Kajal Couture's biggest end of season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewelry from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
10: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
11: Dad.
12: What's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK, regulated by the FCA.

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। एजेंसी सप्लाई। फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स, डू कम इन एंड सी अस एट मीनार ज्वेलर्स टू क्रिएट द परफेक्ट सिंबल ऑफ योर लव स्टोरी। मीनार ज्वेलर्स, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
4: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a song, huh? तलत महमूद साहब, दैट वेलवेटी वॉइस। ये मैं नज़र करता हूँ फरीदा गुलाम अली जी की एंड सलील चौधरी की ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन और शैलेंद्र जी ने लिखा गाना। फिल्म एक गांव की कहानी 1957। होप यू आर एंजॉइंग। Thank you, Kiran, silent listener.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
4: Ye hai Leica Gold.
5: Leica Gold. Nazaron se kah do ji.

0: ये ख्वाब वाले गाने अभी नहीं है. I just gave you an example of 3 or 4.
1: कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं.

0: book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
4: खतरों के खिलाड़ी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी, पावर्ड बाय स्टार टूर्स, एसोसिएट स्पॉन्सर लायनक्रॉफ्ट.
5: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
6: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: अरे वाह, क्या लिखा क्या लिखा। एंड लता जी ऑफ कोर्स हृदयनाथ मंगेशकर के लिए गा रही है, तो इनकी आवाज तो एकदम बुलंद सुनाई दे रही है। एंड सुरेश वाडकर जी ने भी बहुत अच्छा गाया। हृदयनाथ मंगेशकर की फिल्में तो आपको मालूम है, लेकिन फिल्म का क्या म्यूजिक दिया था इन्होंने। फिर दूसरी फिल्में थी मशाल और कुछ दूसरी, बहुत याद नहीं है मुझे, लेकिन ये तो है धनवान। Thank you for your messages. You're loving it, I know.
1: Across London, this is Bali Brambat on Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी, कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
8: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
11: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: Well, she is talking about Gemin Food potato chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Gemin Foods potato chips now.
1: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. across London. This is Bally Brambat on Like a Gold.

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा लहरा के आ।
1: This is Laika.
2: That song, of course, was for my great buddy Harish Marwah. Next hour, there is a special birthday treat for a special brother.

0: ऐसे गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है. हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपेंस टू बी नन अदर देन साहिद लुधियानवी साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई वुड से लिरिसिस्ट्स एंड पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया, हमारी इंडस्ट्री के. एंड लुधियानवी मीनिंग बोर्न इन लुधियाना, एंड ही केम फ्रॉम लुधियाना एंड ही सेटल्ड इन टू Mumbai and passed away on 25th October 1980, before his 60th birthday. So he was 59 and he passed away. What a man. इनके गाने अगर मैं बोलता जाऊं तो आप हर एक गाने पे क्या कहेंगे मालूम है? हाँ जी, तालियां मारेंगे और वाह वाह करेंगे. अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, वो सुबह कभी तो आएगी. मुकेश जी का गाना, ऐसे ऐसे गाने. आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इट्स जस्ट अमेजिंग क्या लिखाई, इंडिविजुअल, ओरिजिनल एंड डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स. अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज यस साहिद लुधियानवी जी. And I will enjoy playing all these songs. ये गाना जो मैंने सुनाया, that was also wishing Dinesh Popat ji, हमारे wonderful listener of Laika Gold and a brother to me, a very happy birthday. हमारे वर्षा जी, क्या बात है? Every year, all Indians celebrate her birthday. Why? Because she was born on 15th of August. फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया के 80th इंडिपेंडेंस डे और इनका तो 21st ही होगा मुझे लगता है, वर्षा जी का. सो हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू वर्षा जी, एंड लेट अस नो हाउ यू सेलिब्रेटेड इट. ओके, आगे सुनिए. ओके, आई हैव गॉट न्यूज़ फॉर यू एंड दे आर एक्साइटिंग न्यूज़. Jay's Entertainment brings to you Bollywood legends live in London with Aftab Shivdasani, singers Aman Trekha and Mayur Patalia. Saturday, 3rd of October at Harrow Arts Center. Tickets from box office, exclusive radio partners Laika Radio. And we got Sanjay Kapoor live. Jay's Entertainment brings to you Bollywood legends live in London with Sanjay Kapoor, singers Aman Trekha and Mayuri Patalia, Sunday 27th September at Leicester's De Montfort Hall. Exclusive radio partner Laika Radio. So these are double dhamakas by Jay's Entertainment, of course.
1: London's biggest classics all day. This is Laika Gold.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: two businesses.
7: Same town.
6: Same service.
7: One appears on page one of Google.
6: The other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question.
6: When your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: पल भर के लिए
9: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज
10: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा
9: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25 बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.
11: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
13: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
15: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02087677627
16: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan Feel good track Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Slow on the A312, the partway southbound before you get to the M4 Junction 3. The A4020 Uxbridge Road's heavy between the partway and Saddle Park. Speed sensor's giving a travel time there, around about 10 minutes. It's queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hangar Lane Directory. Slowing on the A3 West Hill northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. To the Tube and no service on the Piccadilly line eastbound between Acton Town and Hammersmith. Severe delays on the rest of the line due to a fire alert at Chiswick Park. Minor delays on the Central line due to cancellations. There's also minor delays on the Circle line. Again, that's down to cancellations.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Bally Brumbutt on Gold Afternoons. Leica
2: Gold. Hey, this is Sandy Shaw. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7pm with the best tunes, mind games and a bit of Yeah Yavo. Only Leica Gold.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा. भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
12: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
13: after a sold-out show at the Royal Albert Hall. Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
15: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

जात। What a beautiful बुलंद आवाज of जसपाल सिंह, गीत गाता चल। Of course, we are wishing a happy birthday to none other than Sachin Pilgaonkar. रविंद्र जैन का संगीत, रविंद्र जैन की लिरिक्स। नेक्स्ट सॉन्ग अगेन मैन नशे में हूँ, दिनेश पोपट जी के लिए।

0: व्हाट्सएप प्लस अब है स्टार प्लस।
1: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02208767627।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
4: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150205 और विजिट meraboiler.com।
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocenter.org. Assuming you want to get noticed.
6: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है UK। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: This is Sandy Shah on Gold Drive.
8: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
2: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
2: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: Mamster નું પાણી પૂરી અને પાણી પૂરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Like our gold.
1: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around one in five young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kids-tests.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
5: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमिंस्टर स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
6: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से. स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा. भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota.
7: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
4: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से. बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk. रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो नेटवर्क.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
11: बीकानेर वाला परंपरा भी,
12: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
13: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
14: Cutthroat Ke Khiladi.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
17: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
16: Conditions apply. See online for details.
15: Gold Drive with Sandy Shah. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Ato Protected.
3: September mahina ma hasya no double dhamako fari aavi rahyo chhe.
4: Tame bata purush ho to lagne kuvara ho chho.
5: Eh tame stri omne chhe ne purusho nam khota hogovanu band karo.
3: Comedy King Nimesh Shah ane Queen of Comedy Mallika Shah laine aavi rahya chhe. Super hit Gujarati natak Halo Patel bhai ni jaan ma. Have Risley, Potter's Bar, Ilford, South London ane Luton ma. Tickets ane vadhu mahiti mate aaj j call karo. Manju ne on 07931534270. Natak nu अब याद रखो
6: पटेल भाई जन्म।
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 आवर लाइन 07300-9988823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
10: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
10: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
10: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: गोल्ड ड्राइव विद सैंडी।

0: Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The A312, the Parkway, busy southbound before you get to the M4 Junction 3. The A4020 Uxbridge Road, sluggish between the Parkway and Saddle Park. It's slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. A40 Western Avenue, heavy westbound before you get to Gypsy Corner. Continues to queue on the A406 North Circular Road in both directions at the Hangar Lounge area today. The A3 West Hill slowing northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. To the tube and severe delays on the Piccadilly line between Acton Town and Uxbridge, and minor delays between Acton Town and Heathrow Terminal 4 due to an earlier fire alert.
2: Like our gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture. One performer.
4: Countless personalities.
3: A whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
3: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation.
6: In Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
8: हैव यू हैड अ बिरीवमेंट इन द फैमिली? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line. 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
9: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. टीजीसी सप्लाई.
10: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
11: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
10: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
12: sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
13: This is Sandy Shah on Gold Drive.
14: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
13: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सारे जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। नया सप्ताह, क्या बात है, मोटिवेशनल मंडे मनाएंगे आप और हम साथ में यहीं पे। कंग्रेचुलेशंस, मंडे निकल गया, खुश हो जाओ, है ना। हो गया, शाम तक जब पहुंच जाते तो पूरे दिन भर में जितनी भी थकावट हुई वो पूरी थकावट दूर हो जाएगी भी, क्योंकि आप सभी ने ट्यून इन किया है ये फैंटास्टिक शो। फैंटास्टिक नहीं बोला है मुझे सैंडी ने यूज़ करने के लिए, ये लाइवली शो, ठीक है। आई वोंट यूज द वर्ड फैंटास्टिक। आई होप सैंडी सुन रहे हैं कि देखो मैं कितनी गुड गर्ल की तरह, उन्होंने जो कहा था कि नहीं अब तुम नहीं यूज़ करना फैंटास्टिक, ठीक है, ओके, नो वरीज। एनीवेज, तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सभी के सभी प्यारे प्यारे धुरंधर अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लगवा रहे हैं। पहले दो गीत जिनसे हमने इस आवर का आगाज किया, दामिनी फिल्म से कुमार सानू एंड साधना सरगम की आवाज़ में बिन साजन झूला झुलू, एंड उसके बाद में दूसरा आदमी से नजरों से कह दो। प्लेलिस्ट आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, आप सब इस प्लेलिस्ट को लव करेंगे, मतलब ही पसंद करेंगे। सो सवाल लाई हूँ, यस। थ्योरी लाई हूँ, यस, बिल्कुल जी, मतलब टिक टिक टिक मैं सारी चीज़ें चेक करके आई हूँ, है ना। होता है ना कि हम कहीं जाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि दरवाज़ा लगाया कि नहीं, लाइट्स बंद किए कि नहीं, नल बंद किए कि नहीं, है ना, एक चेकलिस्ट होती है, बिल्कुल शो पे बैठने से पहले चेकलिस्ट होती है। सो आज मेरा सवाल आप सबसे क्या है, खाने पीने का सवाल है, भूख लगी है ना इसलिए, ओके, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है ना सभी का। तो आप अपना एशियन नाश्ता जो होता है, पराठे ले लीजिए, भाई वी आर महाराष्ट्रियन सो वी आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ पोहे एंड उपमा, है ना, साबुदाना खिचड़ी, या फिर सेवैयाँ की भी हम लोग उपमा बना लेते हैं। चलिए मैंने चार आइटम्स तो आपको वैसे ही बता दिए। या फिर अब नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पराठे खाए जाते हैं, साउथ इंडिया में इडली सांभर खाया जाता है ना, हर प्रदेश में अलग चीज़ें खाई जाती हैं। वुड यू लाइक टू हैव अपना एशियन वाला तगड़ा नाश्ता या सीरियल्स, बताइए आपकी चॉइस क्या होने वाली है। आपके जवाबों के लिए मैं रुकी हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट ट्रैक जो सुना रही हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, हाँ मैं बोलूंगी नहीं, आप सुनिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपीज एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई।
2: तेरे नैना,
3: तेरे नैना, तेरे।
2: तुम ऐसा करो, ये गाओ।

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
4: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
3: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता लेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794751947.
5: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
6: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
7: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Ye hai Laika Gold, 10:35 AM. चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. सो इट्स नियरली 7:33. इट्स 7:33. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में दाग फिल्म से सुनाया आप सभी को, अब चाहे मार उठे या बाबा यार मैंने तो हाँ कर दी है ना. तो जैसे पराठों पे सब हाँ किए जा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया. अभी मेरा आज का सवाल क्या है, आज का सवाल ये है कि क्या आप हमारा जो टिपिकल एशियन होता है ना, भरपूर तगड़े बिल्कुल तगड़ा जो नाश्ता होता है हमारे यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ में, आप वो पसंद करते हैं या फिर सीरियल्स. नो आई ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ है. राइट, सो अब टाइम हो जाता है लाइफ थियरी का. आज कौन सी लाइफ थियरी सुनाएगी अश्विनी? द ग्रुप फोटो थियरी. हम सभी जब भी कहीं बाहर किसी ग्रुप के साथ में जाते हैं तो ग्रुप फोटोज़ हो ही जाती हैं, है ना, क्योंकि फोटोज़ हमारे लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है. यादगार पल होते हैं वो सभी जो हम फोटोज़ में देखते हैं. और जैसे ही फ़ोटो हमारे पास में आती है, ग्रुप फोटोज़ आती हैं, तो लोग फटाफट क्या करते हैं, खुद की तस्वीर को पहले जूम करके देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ. एंड अगर खुद की तस्वीर अच्छी ना लगे तो फटाफट इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई, चलो चलो वापस, मतलब दूसरी फ़ोटो बताओ, दूसरी फ़ोटो लेते हैं, ये फ़ोटो मुझे अच्छी नहीं लगी. अब उस ग्रुप फ़ोटो में हो सकता है कि बाकी के जो 8 से 10 लोग हैं वो बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन जो बंदा या जो बंदी अपनी पिक्चर को देख के बड़ी पजेसिव हो रखी कि भाई मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरी तो नाक ऐसी दिख रही, मेरे तो आँखें ऐसे दिख रही हैं, बस वहीं पे उनकी गाड़ी अटकी होती है. उन्हें लगता है न जाने लोग मुझे इस फोटो में देख के क्या कहेंगे. तो आ जाए अब मेन टॉपिक पे, हमारी लाइफ से ये थियोरी कैसी कनेक्टेड है. देखिए, हम सभी को लगता है कि दुनिया जहाँ जो है ना वो सिर्फ हमें देखने के लिए बैठी है, उन्हें कोई काम काज है नहीं, हमारी लाइफ पे पूरा फोकस है उनका, हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं. लेकिन एक राज की बात बताऊं, आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए, वो खुद में ही मसरूफ़ है, खुद के लिए जी रहे हैं, खुद मदमस्त हैं. आपको तो मतलब ऐसे ही कभी बोल देते होंगे. एक्चुअली आप अपने घर में से ही शुरू कर सकते हैं, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को देखिए, वो खुद में ही बड़े मदमस्त होते हैं, है ना, बाहर की दुनिया की क्या बात करें. धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई हैं, ज़माना चेंज हो गया है, एंड पीपल आर गेटिंग मोर फोकस्ड इंटरेस्टेड टूवर्ड्स देमसेल्व्स रादर देन केयरिंग फॉर अदर्स. ये चीज़ पहले भी थी, अब ज़्यादा लोगों के समझ में आ रही है. तो चार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो, ये जो सोचने वाले लोग हैं ना, एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये लाइफ थियरी अभी देखी है, पढ़ी है, सुनी है तो, क्योंकि nobody cares, right? So आप अपनी ज़िंदगी अपने मन के मुताबिक जी सकते हैं, क्योंकि क्या सही क्या गलत ये किसने डिसाइड किया? आज मेरे लिए जो मुझे 9 दिखता है और आप अगर मेरे अपोजिट बैठे हैं तो शायद आपको 6 दिखेगा. सो 6 और 9 वाली थियोरी बड़ी ज़बरदस्त है, इसके बारे में भी कभी और बात करेंगे. लेकिन आज की द ग्रुप फोटो थियोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा.
0: The Evening Show with Ashwini.

0: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Leica Gold.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193. Start to

0: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
1: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com।

0: Like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 129.56 इंडियन रुपी, 375.73 पाकिस्तानी रुपी, 449.37 श्रीलंकन रुपी, 166.1 बांग्लादेशी टाका, 88.95 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर, 175.19 केनियन शिलिंग, 63.53 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.88 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम क्या हुआ है. इट्स नियरली 50 मिनट्स पास्ट 7, 7:50. मैंने आप सबसे सवाल पूछा कि एशियन ब्रेकफास्ट पसंद करते हैं या पसंद करते हैं सीरियल्स. तो भाई एशियन लोगों का शो है तो पराठों ने तो पहला नंबर लेना ही लेना है. लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सब लोग अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, बट वंस इन अ वाइल सब लोग पराठे ज़रूर पसंद करते हैं, सीरियल्स भी खाते हैं. एंड समबडी आस्क मी कि आपका ब्रेकफास्ट क्या होता है, तो मोस्टली या एज आई सेड कि मराठी लोग हैं हम लोग, तो उपमा एंड पोहा ऐसे अच्छा लगता है. बट फॉर nearly a few years now, for me it's more of the time kala chana, that is one of my favorites. Okay, because barish aane wali hai to meri taraf se ye geet aap sab ke liye. Khush ho jao, hamare acche din wapis aa gaye.
0: This is Ashwini on Like a Gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
5: सितंबर महीना में हसनो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे. साउथ लंडन अने ल्यूटन मा टिकट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद राखजो.
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation,
7: in Dubai.
8: Are we there yet?
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
9: But how? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
10: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
11: बीकानेर वाला परंपरा भी
6: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
12: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन।
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
12: London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.

0: forgotten memories refreshed like a gold.
1: Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini. कैसा लगा हमारा अंदाज और आगाज इस सेकेंड आवर का? तो पहला गीत हमने आपको सुनाया, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कुमार सानू की आवाज़ में, लता मंगेशकर की आवाज़ में, जब प्यार किसी से होता है मधुश दिल की धड़कन। दूसरा अगेन मेरा फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम लव स्टोरी, लता मंगेशकर एंड अमित कुमार की आवाज़ में, देखो मैंने देखा एक सपना। तीसरा मेरा फेवरेट, अच्छा अब तक आप कुल मिला के समझ गए होंगे कि पूरी प्लेलिस्ट जो आती है वो मेरी फेवरेट होती है। ऑब्वियसली मैं सारे एराज के ध्यान रखती हूँ कि 60s वाले बच्चे खुश हो जाए, 70s वाले खुश हो जाए, 80s वाले खुश हो जाए, 90s वाले खुश हो जाए। आहा, मजा आ गया। चलिए अब इस मज़े को लेके चलते हैं आगे। घर घर की कहानी में आज होता है, मंडे होता है इंडियन पेरेंट्स, एशियन पेरेंट्स, चलिए एशियन पेरेंट्स। तो एशियन पेरेंट्स हम जो है ना, एक तो हम लोग ना रिलेटिव्स और पूरा जमावड़ा जो हमारा होता है, जो परिवार, जो कुनबा होता है, हम लोग सबसे कनेक्टेड होते हैं। और जब हमारे पेरेंट्स बैक इन एशियन कंट्रीज जो हैं, और जब वो किसी के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन स्लैश गॉसिप स्लैश जाने दो यार, अब ये लगा लो आप लोग अंदाज क्या क्या, तो वो सुनने में कितना मज़ा आता है। क्या आप भी मेरे तरह चटखारे ले लेके सुनते कि अच्छा और क्या हुआ, हाँ उसने ऐसा कर दिया, बिकॉज आई टॉक द सेम वे विद माई पापा जब वो कोई गॉसिप सुनाते तो। ओके एक मिनट, बिफोर ये कि सिर्फ औरतें गॉसिप करती है, ना ना ना, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च मैन तगड़ी वाली गॉसिप करते हैं, ठीक है। सो जब आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं बैक इन एशियन कंट्रीज और वो जो गॉसिप सुनाते हैं, तो क्या आप उन्हें लाइफ लेसन देना शुरू करते हैं या सच में बताना कि चटकारे ले लेके वो गॉसिप सुनते हो? सवाल आया आपकी तरफ, जवाब आएगा अब मेरी तरफ, आपकी तरफ से।
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129 इंडियन रुपीस एंड 30 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.

0: जी आप सभी को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अदालत फिल्म से सुनाया ये गीत। मेरा जो सवाल है घर घर की कहानी में, उसमें क्या मज़ेदार आंसर्स आ रहे हैं। ओ माय गॉड, यू नो, मतलब देखो आप और हम कितने सही मिले हैं, है ना, कि बिल्कुल हम, हमारी जो यहाँ पे शेयरिंग चलती है, जो सवाल जवाब चलते हैं और उसके बाद में उस पर हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, भाई मज़ा आ जाता है ना। सो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरफ से बैक इन एशियन कंट्री जब वो हैं, और जब किसी काका मामा चाचा चाची ताऊ ताई जी, है ना, बुआ जी, उनके घर उनके बच्चों के बारे में जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो सुनने में कितना मज़ा आता है। तो बिल्कुल उस पर सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ लिख रहे हैं, घर घर की कहानी वो सब चल रहा है यहाँ पे। आप सभी का एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर रहे हैं। किसी ने कहा कि क्या बात है यार, बड़ा मज़ा आ जाता है ऐसी ऐसी चटपटी बातों पे, एंड साथ में बड़ी हल्की फुल्की बातें हैं, हंस लेते हैं। बिल्कुल जी, इस शो का उद्देश्य यही है कि आप लोग मुस्कुराएं, है ना। दिन भर थक गए, पूरा दिन कैसे निकलना, जाने कितनी सारी बातें हुई होंगी, क्योंकि सुबह जैसे आपने शुरू की थी वो शाम तक तो हर इंसान बदल जाता है, है ना, और हम बदलते हैं। चेंज इज़ कॉन्स्टेंट हम सबकी लाइफ में, और वो चेंज कैसे कैसे आ जाता है देखो। तो मैं और मेरी फ्रेंड कल बात कर रहे थे, और ऐसी तरह फिलोसॉफिकल मूड में जब हम आ जाते हैं तो ऐसे ना, मतलब बड़ी बड़ी बातें होती, तो वो खुद ही कहती कि देख ना कैसे वक्त इंसान को बदल देते हैं। और मैं सिर्फ सुन रही हूँ, और फिर दूसरा सेंटेंस आता है मेरी फ्रेंड की तरफ से, एक्चुअली इंसान ने वक्त को बदलना चाहिए। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, आपको मेरी दूसरे हाथ की तरफ से 3 बार सलाम। आई थिंक फ्रेंड्स के साथ में ये मस्ती हो जाती है ना, कि हम सभी जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वड़ा पाव खाते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोलते ज़रूर हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Register by the 10th of September to get started. The Open University. The future is open.
1: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Jasmine.
5: Oh, terrible weather.
4: It's raining cats and dogs out there, and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry, and we'll help keep you covered.
6: See ya, good luck with the interview.
5: Thank you, bye.
4: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Anup Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota. On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments, and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
11: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
13: Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: तो भाई बहुत सारे गॉसिपर्स मुझे अपने बारे में बता रहे हैं कि वो भी कितना एंजॉय करते हैं गॉसिप व्हेन इट कम्स विद देयर पेरेंट्स। ओके, बाकी तो चलो छोड़ो। अच्छा, तो मैंने आज एक इतनी अजब और गजब रील देखी है, अजब एंड गजब रील देखी है मैंने, अजब गजब रील। उसमें एक मेंस पार्लर में, ओके, और ये कहीं एशियन कंट्री में था, तो वो जो भैया थे जिनका वो पार्लर था और जो भैया अपना फेशियल कराने गए थे, वो तो जिनका पार्लर था, उन भैया ने दो पेस्ट ली, लाल कलर की सफ़ेद कलर की, वो लगाई ये जो भाई साहब अपना फेशियल करने आए थे, और उसके बाद में थोड़ा सा लिया इनो, वो उनके चेहरे पे छिड़का, उसके बाद में लिया गुलाब जल, और जो मतलब इनका चेहरा रगड़ा है एंड एक्चुअली उनका फेस ब्राइट हो गया। ओके, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा क्रिएट करके नहीं बोल रही हूँ, ये जो मैंने रील देखी आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। तो बाकी फेशियल वाले जो ब्रांड्स होंगे बड़े बड़े ही, अब वो क्या करें भाई। अगर आपको ये रील देखने मिले तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे देखिएगा, क्योंकि मैं ये देख के अकेली इतनी हंस पड़ी ट्रेन में, एंड आई वॉज लाइक देना एकदम याद आया कि ओ यार मैं तो ट्रेन में थी, है ना। तो टूथपेस्ट से फेशियल होगा यार, कुछ तो होगा, पक्का वर्क होता है ना, ऐसे हो जाते हैं ना कुछ। इतनी फनी सीरियल्स हम देखते हैं कि अकेले हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। ओके, इमोशन ऑफ द डे में आप सभी को सुनाया मोटिवेशनल मंडे के लिए बड़े दिल वाला इस फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, जीवन के दिन। व्हाट अ लवली ट्रैक दैट इज, है ना। जब भी कभी ऐसे डाउन फील होता है ना, मूड अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे कुछ जिंदगी से रिलेटेड अच्छे और प्यारे गीत सुनने चाहिए, नो दुखी सॉन्ग्स, क्योंकि वो पता चला आपको और दुखी कर रहे हैं। थोड़े हैप्पी और अच्छे सॉन्ग सुनने चाहिए, उससे हमारा मूड भी अपलिफ्ट होता है। नेक्स्ट ट्रैक यू ऑल विल से आहा वाह एंड उफ।
2: Like a gold, the perfect soundtrack for a British summer heatwave. This is Like a Gold.
5: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: Extra podcast update.
1: एपिसोड नंबर 29 आ चुका है. इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी. डू द न्यू जनरेशन ऑफ साउथ एशियन स्टिल कंसिडर गोल्ड एज अ वैल्यूएबल एसेट? बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है, गपशप हुई है, इंटरेक्शन हुआ है. लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइक आ एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज Ash Winnie on Like a Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
5: Hey!
4: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 6333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027199 3-4.
11: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to Minar Jewelers about whether gold is really the best investment.
13: Gold is something which you have in your pocket. It keeps on going up in value. And if you look historically, and on the last 26 years, the price of gold has gone up by 1,895%. No other single item, including property, has gone up as much as gold.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं 129.57 इंडियन रुपी, 375.91 पाकिस्तानी रुपी, 449.57 श्रीलंकन रुपी, 166.15 बांग्लादेशी टाका, 88.88 अफगान अफगानी, 1.35 US डॉलर्स, 175.3 केनियन शिलिंग, 63.56 मॉरिशियन रुपी।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.88 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: क्या बात है, कितने बढ़िया ट्रैक्स लगते हैं जब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तीसरी मंजिल से हमने सुना तुमने मुझे देखा। आराम से है ना, मतलब थोड़ा सा ठहराव वाला ये गीत लगता है मुझे। एंड जैसे जैसे शाम बढ़ते जाती तो पूरी कोशिश होती है कि आप लोग एंजॉय कर सके, ऐसे गीत मैं लाइन अप करूँ। लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर मन्नारे की आवाज़ में नूरी फिल्म से लागा चुनरी में दाग। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स कम्स टू मन्नारे की वॉइस में। एंड सेकेंड आवर अब ख़त्म हो रहा है। हम सभी ने बड़ी हल्की फुल्की बातें अभी इस समय की हैं, खाने पीने की बातें हुई हैं, गॉसिप्स की बातें हुई हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड सवाल यहाँ पे बातचीत हुई है, अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, 8:49 हो रहे हैं ये भी पता चल गया है, द इवनिंग शो भी तो अश्विनी चल रहा है। ओए होए क्या बात है, अच्छा ऐसा है। सो थर्ड आवर में हम लोग क्या करेंगे भाई, बहुत सारी बातें उस आवर में भी होते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो आवर है यहाँ पे, ये जो न्यू सेगमेंट है घर घर की कहानी को, आप सब ने बहुत पसंद किया है, आप सबके मैसेजेस आते रहते हैं, उसे हमें पता चलता है कि आप लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं ये शो। एंड सबसे मेन, बारिश आने वाली है इसलिए कितने खुश हैं हमारे लिसनर्स। जी हाँ, फाइनली अब विंटर्स हो रहे हैं टाटा बाबा, बिकॉज मिड ऑगस्ट आ गया है ना।
0: लाइक अ गोल्ड, पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द यूके। This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
5: Oh, terrible weather.
4: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
6: See ya, good luck with the interview.
5: Thank you, bye.
4: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Gajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Gajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Gajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Gajal's Couture.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192-388-3100. Atoll protected.
6: Dad.
10: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
14: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
15: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 129 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 9:19 17th of August मंडे और आज मनाई जाती है नाग पंचमी भारत में. कई लोगों ने फास्ट भी किया है क्योंकि श्रावण सोमवार हुआ है. तो श्रावण सोमवार की शुभकामनाएं तो आपको सुबह से मिल रही होगी, हमारी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं. एंड जब सावन का महीना होता है तो कहते हैं कि बड़ा पायस्ट महीना होता है, तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए. इस बारे में बहुत से किस्से, कहानियां एंड थियोरीज आपने भी सुनी होगी. भाई शाम के शो में आप कोई ना कोई लाइफ थियोरी सुनते हैं, तो आज मैंने आपको सुनाई थी ग्रुप फोटो थियोरी, बड़ी अच्छी लगी आप सबको. वो अपलोड हो चुकी है ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ रेडियो वाली अश्विनी. अगर मिस हो गई है तो ज़रूर वहाँ देख सकते हैं. एंड आज और भी कुछ मनाया जाता है. आज मनाया जाता है नेशनल थ्रिफ्ट शॉप डे, नेशनल ब्लैक कैट अप्रिसिएशन डे, नेशनल नॉन प्रॉफिट डे, बेबी बूमर्स रिकग्निशन डे, नेशनल वनीला कस्टर्ड डे, नेशनल आई लव माई फीट डे एंड नाग पंचमी. इतने सारे डेज. अच्छा, इन सब का तात्पर्य क्या होता है कि हमारी जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ हम ध्यान देते नहीं हैं. और जब ऐसे कोई डेज आते हैं जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, बच्चे डे, बेस्ट फ्रेंड डे, मम्मी पापा डे, सारे जो डेज हैं वो कहीं ना कहीं किसी के लिए आप हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं. आई लव माई हिंदी, एक तो बड़ी शुद्ध हिंदी आती है ना कभी कभी. सो ऐसे हो जाता है कि यू नो ये डेज मनाए जाते हैं और वो रिमाइंडर्स हमें उन इंसानों को या उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने में मदद करते हैं. तो चलिए अब चलेंगे आगे. एंड आर्टिस्ट ऑफ द वीक में साहिर लुधियानवी जी हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं. उन्हीं की फिल्म हमराज से सुना रही हूँ आपको अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Register by the 10th of September to get started. The Open University. The future is open.
0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: One performer,
10: countless personalities,
9: a whole universe of entertainment.
10: Sunil Grover, live UK tour 2026.
9: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
10: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
9: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
9: For more information, contact 07585 801 801. official radio partner, Leica Radio Network.
11: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी अप्लाई।
14: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो LeicaGold.com पे।
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: चलिए मिला लेंगे घड़ी को, देखते हैं टाइम कितना है, 9:30। गज़ल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली। तो आज मंडे है, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ कव्वाली। कव्वाली बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़माने को दिखाना है। तो शैलेंद्र सिंह एंड आशा भोसले की आवाज़ में, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद ये कव्वाली आप लोगों को सुनाएंगे। उसके पहले ज़रा आपको सुना दे किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म से एक बड़ा ही मेलोडियस ट्रैक।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड।
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
8: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The sun is out, and so are the summer hits on Like a Gold. Feel good track, brought to you by Derry Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 129.162 इंडियन रुपी, 375.91 पाकिस्तानी रुपी, 449.54 श्रीलंकन रुपी, 166.18 बांग्लादेशी टका, 89.15 अफगान अफगानी, 1.35 यूएस डॉलर्स, 175.24 केनियन शिलिंग, 63.55 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £104.88 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 40 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मोटिवेशनल मंडे हमने बनाया, 3 अमेजिंग फीचर्स, घर घर की कहानी, बड़े हंस हंस के आप सबके मैसेजेस आते हैं, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं आप लोगों सेक्शन. ओके जी, सो गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2, इतने सारे चैनल्स हैं आप सबके लिए सुनने के लिए. एंड जो दो ट्रैक मैं आपको सुनाने वाली हूँ जाते जाते, पहला इज मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सावन बहादुर से, कान में झुमका चाल में ठुमका, दैट विल बी द फर्स्ट ट्रैक. एंड गज़ल या कव्वाली में क्या सुनाने वाली, यस मैं सुना रही हूँ आप सभी को कव्वाली. सो ज़माने को दिखाना है, बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी गज़ल, ज़रूर गज़ल नहीं भाई कव्वाली है. कल आप और हम साथ में मनाएंगे टेरिफिक ट्यूसडे, सप्ताह का दूसरा दिन है. एंड ट्यूसडे दोपहर के बाद में समय जो स्पीड में निकलता है ना, फिर जाके सीधे फ्राइडे में रुकता है, ये ऐसा मेरा मानना है. मुझे लगता है कि ट्यूसडे आफ्टरनून के बाद में ना समय बहुत स्पीड में निकल जाता है. क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? ना ना अभी नहीं, कल इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कल और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बड़े ही मेलोडियस ट्रैक होंगे आप सभी के लिए. आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेजेस हमें समझने में मदद करते हैं कि कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. आप लोगों की पसंद नापसंद सब पता चलती, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्यार बड़ी अच्छी चीज़ है, तो प्यार दो, प्यार लो, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए. एंड लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो उसको प्लीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना करो. लव यू ऑल, टेक केयर, हियर आई से बाय बाय.
3: Laika Gold. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: This is Ash Winnie on Like a Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203773 7161 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.

0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
1: Dad,
2: what's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
1: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
3: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो, लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: दिस इज लाइक अ गोल्ड। रेमिनिस दोज क्लासिक्स।

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: फंक्शन रखा हुआ है.
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
6: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
10: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com.
11: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

0: This is Leica Gold.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
1: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
5: Location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Khatron Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.
8: Khatron Ke Khiladi.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
2: Leica Gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada

0: Your nightly hits. Gold Nights. Like a gold on 10:35 AM.
1: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
2: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
3: ए तमे स्त्री हमने ऐसे रहे पुरुष हो ना खोटा होगो वालो बंद करो।
1: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान माँ। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन माँ। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद रखो
4: पटेल भाई जानमा।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल at all protected.
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Mera boiler lekar aaya hai pre-booking sale ka shandar mauka. Ab sabhi Bosch boilers पर सीधे £350 की बचत। 25 kilowatt boiler सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की Bosch गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com.
9: Disney supply. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
10: Four beers, please, garçon.
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
14: Bollywood ke legend kalakar, sirf Leica Gold par.

0: Leica Gold.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
2: Daddy!
1: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares, and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-57. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Atoll protected.
6: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।